0: ना भी एक वधा वधिया जड़ा बूटा है वो बन जाना हैगा, उस तो
1: अगेन
0: बाद उन्हें आप ही अपनी केयर कर लेना।
1: बिल्कुल सही जी, बहुत वधिया सर। आखिर विच जाते जाते तुसी कोई पेरेंट्स नू बच्चों नू साडे सुनने वाले दोस्त जिहड़े ने उन्हां नू कोई मैसेज देना चाहो?
0: मेरा मैसेज बस यही है कि पेरेंट्स जिहड़े साडा टाइम ही, मैं इस तरह ज्यादा उम्र नहीं है कि मेरी, और
1: जी
0: 15-20 साल पहला जिहड़ा सिस्टम सीगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच होंगे सके पेरेंट्स नाल, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ये सब चीज़ा नहीं होंदिया सीगिया। असी आके स्कूल तो बाद पेरेंट्स नाल गल्लां करते सीगे, उन्होंने दसते होंगे से कि मम्मी अज साडे नाल स्कूल दे विच ये होया, साडे फ्रेंड्स ने ये
1: जी
0: किया, साडे टीचर्स ने ये किया। वो जड़ी एक प्रथा हैगी साडे देश की, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हुण बच्चे
1: बिल्कुल
0: अजकल आंदे ने या तो वीडियो गेम तो लग जाएंगे, फेसबुक सारे फेसबुक के विच अकाउंट है, मोबाइल के गेम्स
1: वो एक, हाँ बिल्कुल सही।
0: मोबाइल्स तो लग जाएंगे। पेरेंट्स को चाहिए है कि अपने बच्चों घट्टो घट 1 या 1.5 घंटा रोज़ देन, उन्होंने पूछन कि तेरा दिन अज किवें लंघिया, कि
1: जी जी
0: स्कूल
1: जी
0: के
1: जी
0: विच
1: जी
0: की होया, भावें
1: बिल्कुल
0: तुहानू नॉलेज है या नहीं है। मैं मेडिकल च सी,
1: हाँ
0: मेरी मम्मी
1: जी
0: मैनू पुछदे होंदे सीगे कि अज तेरा मेडिकल कॉलेज च की गया, की कीता, की चीरा फाड़ी
1: ठीक, हाँ
0: कीती,
1: जी हाँ जी
0: ये भी मैं
1: ठीक
0: उन्होंने दसदा होंदा सीगा।
1: है,
0: तो
1: क्या
0: इस तरह
1: बात
0: का जो तुहाडा कनेक्ट एस्टैब्लिश हो जाना है, टेक माई वर्ड, तुहानू पूरी लाइफ पूरे करियर अपने बच्चे की चिंता करने की लोड़ नहीं है। और
1: जी
0: जो
1: जी
0: वड्डा भी हो जाऊंगा तुहानू दसूगा कि मम्मी मैं अज ये किया, दसो तुहाडा क्या, तुहाडा कनेक्ट भी बना रहूगा, तुहाडा प्यार भी बना रहूगा, तो बच्चा भी तुहाडा जिहड़ा है वो बहुत अगे उहदा करियर शेप होगा।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आया अज सारियां गल्लां करके, बहुत ही वधिया जिहड़े विचार ने दोस्तां नाल सांझे कीते, बहुत खुशी हुई। तो
0: थैंक यू शमी जी, थैंक यू।
1: दोस्तों अज आपां ने गल्लां कीतियां, तुसीं सुन रहे सी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी, IAS SDM दसूहा जी दे विचार आपां सुने अज। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर दुआबा रेडियो वालों, ते इस तरह ही आपां दुआवा करांगे साडे दोस्त इस तरह सुनते रहन, ते प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, ते बहुत जल्दी आपां फिर हाजिर होवांगे एक नवे प्रोग्राम दे नाल, नवी शख्सियत दे नाल। धन्यवाद बहुत बहुत, ते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, रब रखा।

मैं तेरा पारदानी पानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी, आ एक दूजे च समाइए नी आपां दोवें हाणो हाणी।

मंजिल सारी कर लेनी एक दिन आपां दोवां। मैं तेरे हासे आच हसां, तेरे रोने आच रोवां। नी